दर्शन परसिय गुरु कै जन्म मरण दुख जाई। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जैत श्री महला पंजवा वार सलोका नाल एक ओंकार सतगुर प्रसाद

सुखो तल गुर सेविया एनस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। वाहिगुरु वाहिगुरु।

ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही तस्वीं चौपई पुंडरा छसका काटा सीसा श्री अस्केर जगत के ईसा पहुपन विश्वगंते भई सबन आन बधाई दई धन्य धन लोगन के राजा दुष्ट दाहे गरीब निवाजा अखल पवन के सृजन हारे दास जान मोहे लेहो बारे कब्यो वाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूरन होए चित की तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान।

पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो।

0: हाथ सकाथ। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। हर जस लिखे हैं बेअंत
1: सोहे से हथा, लिखे हैं धन धन भाई मनी सिंह जी।

सुख कनेरे कोई न जाने तुमरा उचे ते ऊचा भगवन सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुम ते हो तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लिंग त्याए फिरंगत गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे आए घर नौनी दयावै ताए सब थाई हुए सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यंतर के बोलो जी पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई देख वाही देख के निठ कीता तिन्हां प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यंतर के खालसा दी बोलो जी जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बन बन कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सवासां नाल निभाही जिन्हां दी कमाई दा ध्यंतर के खालसा जी बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यंतर के बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे चितावन का सदका सर्व सुख

बड़ी शोभा कर रही थी। रंजीत सिंगा तू ते कमाल कर दिती है, एडी तेरे विच सियाण किड्डी वड्डी जंग जित ली है। आ जदों हर एक ने शोभा कीती ते रंजीत सिंह दे मन विच भी मैल आ गई भी सचमुच ही मैं बड़ा वड्डा योधा, मैं किड्डा वड्डा काम

बड़ा गोल है पर कोई औलाद नहीं। हर रोज सतगुरां दे अगे तरले करदा है, सतगुरु तू सब दी झोली भरदा है, मेरी भी झोली भर। सतसंगियो जंग मंगियाणी दी गल है, पाकिस्तान दी ए साखी। सतगुरां ने भाग लाए इहदे घर पुत्र होया। आपां संसार विच तकिया है, दात प्यारी बिसरिया दा तारा। जदों दाता मिल जान ते देण वाले नूं भुल जांदा है। मंगदा गुरुद्वारियों है ते खुशियां ठेकियां ते क्लबां विच जाके मनांदा है। आ पुत्र होया ना गुरु नूं भुल गया, शराबां दियां पेटियां खुल गईयां ते अपने मित्रां नूं शराबां ते कबाबां दे नाल खुश कर रहा है। समां भी

एक दिन अपने बाप नू तके मार के बाहर कट देता, तू मेरा प्यो नहीं, तू मेरा दुश्मन है। नौ भी किड्डे बोल कबोल बोल दी है, एडिया एडिया उच्चिया कोठिया ते बड़िया बड़िया कारा खलोतिया ने, ते ए सेठ गेटा दे बार बैठा प्रसादे तो भी मोहताज है। आज पुत्र जिनू एडिया मनता नाल मनिया सी, एक प्रसादा भी देण नू तैयार नहीं। बाबा नंद सिंह जी नानक सरवाले अज इस नगरी विच आए, बाबा जी दी सोभा सुनी ते दीवान लगा होया है, समाप्ति होई ते जाके बाबा जी दे चरण पकड़ ले। बाबा जी मेरे कोलों केड़िया भुला होया ने, जेड़े पुत्र नू एडिया मनता मन के लिया सी उन्हें धक्के मार के कढ़ दिता है। नौ बोल कबोल बोल दी है, आ जदों अपनी मां नू बचे माड़े बोल बोल देने ते मेरे तो सुनिया नहीं जाता। किड़ा गुनाह कीता है, किड़े जन्म दी सजा भुगत रहा हां। बाबा जी आखन लगे हुए सेठ ऐसे ही जन्म दी भुगतदा पिया। एक गल दस, पुत्र मंगिया गुरु नानक दे दरबार विचों ते खुशियां किहदे नाल मनाईयां सी? अपनी खुशी विच गुरु नानक नू बुलाया सी? शराबां ते कबाबां दे नाल तू दोस्तां नू मित्रां नू खुश कर सकदा है, गुरु नानक नू खुश नहीं कर सकदा। जिन्ना चिर गुरु नानक नू खुश नहीं करेगा, उन्ना चिर तेरियां खुशियां कच्चियां ही रह जाणगियां, तेरियां खुशियां पक्कियां नहीं होंगियां। तू गुरु नानक नू भुला दिता, बाबा जी दे चरण पकड़ के हंजू केरे, बाबा जी सच ही मैं बड़े गुनाह कीते ने, देण वाले नू भुला दिता है। ते बाबा जी कहिंदे, सो क्यों विसरे जिन सब किछ दिया। दोस्त मित्र रिश्तेदार तेनू खुशी वेले सारे याद रह गए, ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तेनू भुले गया। कदी गुरुद्वारे चक्कर मारिया है, कदी संगत विच गया है, दुख वेले किड़े गेड़े मारदा सी। हंजू केरे, बाबा जी मैनू बख्श देवो। ते बाबा जी ने सारी संगत नू बिने कीती भी सारे रल के अरदास करो, इस सेठ दी झोली सुख पै जान। ते संगत अरदास कर देवे, क्यों ना खुशियां आ जान। सेवकां नू भेज के इस दे पुत्र ते नूह नू भी बुलाया, बाबा जी ने किन्ना चिर इन्हां नू सिख्या दिती। आखण लगे, बचियो मां ते प्यो रब रूप हुंदे ने, जेड़े माता पिता दी सेवा नहीं करदे उन्हां नाल रब रुस जांदा है। तू अज अपने बापू नू धक्के मारदा है ते कल नू तेरे पुत्र तेनू धक्के मारनगे। इंज चंगा नहीं बाप दी सेवा करया कर। बाबा जी बचन कर देन ते कौन मोड़ सकदा है। आ सतसंगियो, परी संगत दे विच अपने बापू दे चरण पकड़ ले। नहीं बई, देन वाले नू कदे नहीं पलाना। सब कुछ उसदा दिता होया है, सारियां रहमतां उसदियां दितियां होईयां ने, ते साडा किड़ा चंद्रा सवा है। आपां जांदे हां ना गुरु ग्रंथ साहिब जी दी हजूरी, ते नमस्कार करन वास्ते जदों अपना पर्स कढ़दे हां, सब तों पहलां तकदे हां बई फटिया नोट केड़ा है। जे फटिया नहीं ते सब तों छोटा नोट केड़ा है। बेशक गुरु साडे पैसे दा भुखा नहीं, पर गुरमुखा ओ प्यार दा भुखा है। तेरा किहो जिहा प्यार है गुरु लई छोटे ते फटे नोट टोलदा है। नहीं बई, सारा कुछ उसदा दिता होया है, कदों खुशियां आउणियां ने,
जदों सचमुच ही अंदरों आखेंगा सतगुरु मेरा मुझमें।

तेरा है, मेरा कुछ नहीं। आपा तकिया है साडा किहो जिहा सुभा है, घर विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रकाश भी है, ते उसे घर दे विच शराबां ते कबाबां भी है। नहीं बई, तू गुरु की नरादरी करदा है, सारा कुछ देण वाला ते ओ है। अपने कमरे वड्डे वड्डे, अपने कमरे विच सोहणे गलीचे ते वड्डे कमरे, ते गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश पौड़ियां तले छोटे छोटे कमरे विच कर देता है। बाबा ईसर सिंह जी नानक सर वाले बख्शिश करते सन, ये सचमुच गुरु नानक है, कोई मेरिया अखां नाल तक लवे, साडिया नजरां विच फर्क है। जे ये कुछ करते हां प्रगट गुरां की देह करके नहीं मनते। ओए गुरु सिखा, खुशियां ते तेरे मगर

तेरे घर दे अगे गुरु ग्रंथ साहिब जी दी सवारी लंघनी है। ते बाबा जी कहिंदे सन सारी गली विच झाड़ू ला दे, लोकां नूं पता लग जावे कि अज इस दे मालक ने लंघना है, अज इस दे गुरु ने लंघना है। ऐवें उपरों उपरों आखी जांदा है भी सारा कुछ तेरा है। आ संसार विच तको घरां विच कोई समागम है ना, ते जदों बाजार कपड़े लैण जांदे हां अपने वास्ते हजारां रुपईयां दे कोट पेंट, ते गुरु वास्ते ये दुकानदार नूं की आखदा है भी कोई 52 रुपईयां दा रुमाला गुरु वास्ते दे दे। ओए गुरसिखा की तेरी भावना नूं होया है, जिन्हें तेनू सारा कुछ दिता उहदे बदले जदों तू रुमाला वस्त्र खरीदने ने उदों क्यों जेब कुटदा है, उदों क्यों सरफे ते उतर आया है। नहीं बई दिलों आख मनो आख सतगुरु सारा कुछ तेरा है, मेरा इस विच कुछ भी नहीं है।

गुर जिनको सो प्रसन्न, नाम हर हृदय निवास है। जिनको गुर सो प्रसन्न, दुर्त दुरंतर नास है। गुर जिनको सो प्रसन्न, मान अभिमान निवार है। जिनको गुर सो प्रसन्न, शबद लग भव जल तार है। परचो प्रमाण गुर पायो, तिन सके थो जन्म जग।

0: क्या विचारे।
1: सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई।
0: हरी उसी जाए रजासी रचना जिन रचाई।
1: रंगी रंगी पाती कर कर जिन सी माया जिन उपाई।
0: काय कर वेख्या कीता अपना जितिस जी वड्याई।
1: जो तिस पावे सोई कर सी हुकम न करना जाई।
0: सो पातशाहो सहा पातशाह नानक रह न जाई।
1: हुंदा संतोख सरम पद झोली ध्यान की करह बिभूत।
0: काल कुआरी काया जगत डंडा प्रतीत।
1: आई पंथी सगल जमाती मन जी तय जगजीत।
0: आदेश से आदेश आद नील नाद नाह जुग जुगे को वेश।
1: उत गया अंदया भंडारण कट कट वाजह।

अनंत साहिब रामकली महला तीजा आनंद एको ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया राग रतन परवार परियां शब्द गावन आया।

0: वासना तू अनरस राच रही तेरी प्यास न जाए
1: प्यास न जाए होरत चित जिचर हरस पल्ले न पाए
0: हरस पाए पल्ले पिए हरस बहु न तृष्णा लागे आए
1: ये हरस कर्मी पाए सतगुर मिले जिसे आए
0: कह नानक होर अनरस सब विसरे जा हर वसै मन आए
1: हे शरीरा मेरिया हर तुम मैं ज्योत रखी ता तू जग में आया
0: हर ज्योत रखी तुद विच ता तू

हम अवगुण परे एक गुण नहीं अमृत छाड़ बिखाई माया मोह परम पै पुले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनया गुर संगत

गोपिया गावन गान गावन सीता राजे राम निरपो निरंकार सत नाम जाका किया सगल जहान सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ पिनी रहन जना मन जाओ सिखी सिख्या गुर विचार नदरी कर्म लगाए पार कोलू चरखा चक्की चक थल वारो।

हर अन दिन अनद रहस जियो वाहू वाहू वाहू वाहू वाहू वाहू वाहू वाहू वाहू वाहू वाहू वाहू वाहू वाहू वाहू वाहू वाहू वाहू वाहू वाहू वाहू हर पाएड़ा बड़पागी मेरे गोविंदा नित लैला मन हास जियो।

0: वस्तु अंदर वस्तु समावे दूजी होवे पास।
1: कही बने अरदास
0: कूड़क माने कूड़ होवे नानक सिफत।

नानक करना जिन किया फिर किसी कर निसार, नानक करना जिन किया फिर किसी हर जुग जुग भगत उपाया, पैर रखदा आया राम राज, हर नाखस दुख हर मारिया, प्रहलाद अंकारिया निंदका पिठ दे नाम दे मुख लाया, तन नानक ऐसा हर सेविया अंत ले छाया। लोक महला पहला आप पांडे साजियन आपे पूरण दे, एक निहाली पैस बन एक ऊपर नैन खड़े, आपे साजे करे आ